0: से चार से आते थे और 40-50 आने उनके पास में शामिल भी थे। 100-50 मरीज ठीक है तो कभी अमन के पुरुष है जाए तो हमारे मन अमन के मुनि की चिंता नहीं के बाबू जला लेके जाए पूजा पाठ करे अब उनका मन बड़ा रह जाता है। थोड़े भी लोग ठीक है हमारा मन संस्कार खान संस्कार मेरी सब जगह खातिर अब ये नाटकों द्वारा बात हमारे सरकारें बदलिए और गांव का मन बोले जिसने कि लखनऊ की नंबर में अथवा दरभंगा की यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मन के ये कर दिए उजागर करिए बदलने की जीवन स्तर बैठा करके जो बची मन के जो भी ग्रंथाई मन के स्तर और ये सब बचा स्तर होंगे जेकर
1: मसाले रुपये मसाले रुपये कुछ चीजें कुछ चीजें खुशी सर

पर जो कार्यक्रम जुटा रही है उसमें कर्म कारण से होता कारण से हम सब प्रतिज्ञा ईश्वर मैंने और हम जन्म

लड़ाई है बहुत अच्छा आता है जिंदगी कभी आप आदमी जिंदगी जाते कहीं जेब ऊपर लगाएंगे तो आप गारत भी कहां कभी लगा के चलेंगे जो कभी वाराणसी के मंत्री कहां बढ़ेंगे जो जब राम राम करके उठने तो वाराणसी की इंटरनेशनल जेब खोल रहा है जो गारत भी कहां पड़े सारे और पढ़े रूप से निकले सारे सवाल आप उसके विचारों को लोगों की सोचे हो ये विचार करेगा तो मन बड़े पड़ेंगे नारद जी अरे भी तो

0: सोचे चाहे वो विकास कार्यक्रम मुजीपुर बल्कि हमारी मंत्री करनाई जब हम वहीं अगर हम कुछ नहीं कर सो तो मैं घर चलो या छोड़ व्यवस्था अब ठीक बात जाकर दूंगा हमारा मूर्ति हमने स्वागत थी कहा कि हमें छाई जा
1: अस्पताल में पूर्व हमारे जैसे जैसा राजभर पूरे गुरु पर सरकार से

साधु उसने खबर कर रखा थी वो हरिद्वार जिले के जरिए जाने वाले थे। आज कार्यक्रम का समय है और एक पुष्पा जी उसने कर गौरी संगत जिले के जरिए।

महाभिकरण में देखा अनुसूचित सहायता मंदिर द्वारा समूह अभिकरण संबंधी समूह को प्रतिलिपि समूह दर्जा प्रमाण प्रतिलिपि समूह को छात्र अरक्ष को फोटो अरक्ष परिवर्तन नया समूह दर्ता अनुसूचित मंदिर समूह अभिकरण में देखा अनुसूचित सहायता मंदिर के द्वारा पूर्ण रूप में अनुमति की

0: 一般听他们这些还算
1: 落魄也干了一些活。
0: 现在干我们三处可挣了还，对。
2: आइए का दोनों साथ से आगे हम लोग अपन सांस्कृतिक के नए विषय के आगे बढ़ा रहे हैं।
3: हाँ, धन्यवाद।

0: कभी उन्होंने दिए धन कभी आज उनके का जीवन अपना मुसलमानों को शांति स्वस्थ जीवन अपनाई
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा सभी प्रचार ही संदेश।

0: करिब 500 नगरपालिका का युवा महिला बाल बालिका तथा रोजगारी लगायत का क्षेत्र में काम करते राज्य महाप्रमुख प्रमुख प्रसाद सचिव ने बहादुर ओली उपाध्यक्ष पांचवी उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष बद्रीनाथ दास सामुदायिक पुस्तकालय सदस्य गुरुराम भुजेल नागरिक समाज संचाल का सदस्य विनोद कुमार परियार युवा संचाल का सलाहकार एक नारायण अधिकारी लगायत का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अवसर में शुभकामना तथा अपन धारणा प्रदान बांसवाड़ युवा संचार सदस्य राजस्थान को अध्यक्षता में मिलन कार्यक्रम का संचालन साथ ही उद्घोषण तथा वक्तृत्व करना तारीख और प्रशिक्षार्थी मीना पौड़ और रश्मि धमला का कार्यक्रम में युवा संचार का हिमाचार का स्वागत मंतव्य धरा युवा दिवस अवसर में आयोजित संवाद से युवा का नेतृत्व विकास होना स्थानीय विकास पात्र संरक्षण लागू सम्मेलन में युवा का भूमिका प्रभावकारी बनाए जान पर्ने सरकार सरकार ने आवश्यक रूप संदेश देखा बर्तिया का बयापाल गांवपालिका तीन गुड़ाडोरी गुड़ाती सड़क खंड में रेलक सवारी दुर्घटना में प्रति एक जना मोटरसाइकिल चालक का चयन देवा ठाकुर दास नेपालगंज ओर चैती नगर बीआर 02 PC 2528 नंबर का खान के जे कुहर 500 चैती नगर डी 14 पर 79 नंबर पर 99 नंबर का मोटरसाइकिल ठक्कर देकर दुर्घटना पीड़ा को दुर्घटना में गंभीर घायल जिला प्रयागराज गांव पालिका डी का 55 वर्षीय गणेश प्रसाद पांडे का उपचार में पाए के स्थित फेरी अस्पताल में जान गई प्रहरी चलाने का ठक्कर देना जीप को चालक बारापर्दे नगर पालिका 329 वर्षीय प्रहरी नियंत्रण में रहकर घटना बारे थप अनुसंधान जिला पदाधिकारी बर्दिया चलाइन कार्यालय बर्दिया सामुदायिक वन में पानी तक पहुंच सुनिश्चित कर जिला का 8 स्थान में कृत्रिम पोखरी निर्माण करवा कर्मी को हिट का बेला में पानी का अभाव वन्य जंतु गांव घर पानी खोजा ऐना ऐना को सेव जोखिम ध्यान निपलस करना बारे उद्देश्य ने कार्यालय स्थानीय सामुदायिक प्रमुखसँग सहकारीमा पोखरी बनेको निर्माण विगत स्थानमा बारापर्दा नगरपालिका 9 बनगाईका जनकल्याण वडा नम्बर 10 बैतामा वडा नम्बर 10 बैया गाउँका रूपमा वडा नम्बर 10 छात्रसोप नगर स्थित मुख्य हरियाली वडा नम्बर 4 को पन्नाका भैरव पर्याताल गाउँपालिका 8 का तिलकना पर्याताल का मतदैला और ठाकुर बाबा नगरपालिका स्थित बेरोपा चटिया सामुदायिक वनमा पन्नाका स्थानीय दरबारी थार कर्णीमा बने सन्तु पानीको समस्या न्यूनीकरण गर पोखरी प्रयोग जानकारीबाट बगैरा फाटा सामुदायिक वनमा प्रदर्शित कार्यचरण थारू उपवनमा लडियाका तटीय क्षेत्र तथा दूरवर्तकद्वारा वन्य सन्तुकरण सहज पहुँच कला ऐतिहासिक रूपमा पानीको व्यवस्था आवश्यक हुनको यहाँ हिँड्न डिभिजन बन्से सहयोगको निर्माण र डिभिजन कार्य प्रक्रियाका पूर्णविधि परिस्थिति सरकार से बजेट नियोजन कर कैका 8 को सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण सम्भव हुनको भविष्यमा थप स्थानमध्ये योजना समाजलाई निर्माण र बर्दियामा हाल 252 छ सामुदायिक वनमा डिभिजन बन्से वनमा संरक्षण व्यक्तिको निर्माण गरिएका राष्ट्रिय समाचारको बारे बिन्दु सेट
1: सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा का सभापति रविन्द्र मिथाई चुनावी परिणाम को युवा नेतृत्व का मंत्री परिषद ने किया मुलुक को प्रथम शिल्पी स्थापना पूरा नील महिलापति युवा कल्याण सरकार परिवार मुख्य काम कर आज नेपाल पर्यटन बोर्ड में आयोजित कार्यक्रम में बची सभापति रविधानी वहां सरकार प्रधान मैदान विटामिन समेत सड़क का आवाज कम निकलना सरकारको परिणाम दिनुपर्ने चुनौती छ गैरसमेत बटैल यद्यपि समाजमा जनताको कमी भइसकेका लक्षण सरकार परिणाम पद्माको विजय छत्र निराशिना अवस्था चाहिँ दुनियाँ गर्न उहाँ कार्यबाट हामी छाने माइती घरमा आफ्नो भेट लग्न राखिएपछि जब स्थानीय राष्ट्रको तुरन्त वा नागरिक बानी पनि प्रश्न हो अथवा बाध्य छुट्याएपछि उहाँ तर्फबाट
0: राष्ट्रिय समाचार श्रृङ्खला सन्देशका समय लाग्नुमा उहाँ सन्देश सुनाइसके पहिला मुख्य मुख्य सन्देश दिएका पाँचपरि नगरपालिका महाशिल्पी लिनिया स्थानीय तह स्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सुरु गर्दा सत्तरोत्तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिका सभापति रविलामी छाए चुनावी परिणाम युवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद सेकेवल मुलुकौं त्यसैको सपना पूरा नीति बाह्र लाख सरकार परिणाममुखी काम गर्न सत्र 7 बजे नेपाली भाषा समाचार कक्षमा प्राथमिक सङ्ग्रह रविशंकर रमेशसँग सङ्ग्रह बिन्दु कुमार अधिकारी सूर्य जय।

अभी कुछ ऐसा पहले सराखार तथा प्रसन्न राप्ती को कुसुम जल मापन केन्द्र में महापर्व देखे अन्य प्रमुख नदी में आज पानी को सतह सामान्य मात्रा बढ़ने अनुमान भोलि पर्सि भी देशका प्राय सभी ठूला नदी में पानी को बहाव उल्लेख रूप में बढ़ने पूर्वानुमान कर देशभरका विभिन्न प्रकाशन प्रसार केन्द्रमा देखिएको औषधिको अभावमा सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आदान प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। सीआईएसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य सशस्त्र मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि सबैले टोपेको अवस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था छ।

0: वॉलेट डिवाइस इन सेलर आईटी फिशिंग लिंक मैसेज पर एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने वाले को पैसा लगने के कारण अपने जीवन में शहीद हो जिसमें संभावित पीड़ित तत्काल एसएमएस कॉल वाले मध्यवर्त मतलब में थप्रभाव स्थापन
1: संक्षेप में निर्वाचन आयोग ने विदेश में रहकर नेपाली नागरिक को मताधिकार

इसको यात्रा करें। हम पहले की जाति इंडिया सभी विचार यात्रा करते जनता।

बहुत खूबसूरत है, सभी प्रांत जिलों के नए कार्यक्रम सुन सकता है। उनको निर्णय ले सरकार को विरुद्ध में भारत में राजनीतिक विश्वास को लागे हुए आंदोलन बदले अधिकार थे। उन्हें धारावाहिक सिद्ध करी थी। न्यायाधीश महोदय ने लॉ सोसाइटी को आदेश लाए अस्वीकार करेगा एक सामान्य कदम उठाएगा लॉ सोसाइटी का।